0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो
2: Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron.
3: Biak nga, Judah, Kapela Vo, Meyuda, Rap Knowledge, The Akbar, Souls of Africa, Jungle.